कमरे में मम्मा ने कम न डाउ जाए ने दमनी मोहि ने को खामोश फेलियर दस्त स्टेट द माय हार्ट इन नो कॉर्ड कैप.